अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। भवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः।

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री मद्भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण गुप्त ईश्वरीय ज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य समझने वाले मूढ़ हैं, मैं तो इस चराचर प्रकृति का सर्वस्व हूँ।

श्री गोविंद आश्वस्त करते हैं कि अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रत भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री भगवान अन्य देवताओं की तुलना में स्वयं श्री कृष्ण की उपासना के फल का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रेम भाव से अर्पित पत्र, पुष्प, फल व जल स्वीकार करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन व मुझे ही नमस्कार करते हुए मेरे ही भक्त बनो।

ಬಲ್ಗಂಗೆ ಮಯ್ಯ.

0: ये पानी है। जीवन के लिए तीन अनिवार्य आवश्यकताओं, हवा, पानी और अन्न में से एक।
1: नदियां पानी ढोती हैं और साथ ही साथ बाकी तीन जरूरतें भी पूरी करती हैं।
0: नदियां हवा शुद्ध करती हैं और अन्न पैदा करने में सहायक होती हैं।
1: इसीलिए हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में देखा गया है।
0: गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी से लेकर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तक सभी को पूजा गया है।
1: इन्हीं में से एक है बेतवा।
0: कलयुग की गंगा बेतवा,
1: परम पावन बेतवा।

0: चलो उर्मी।
1: मेघदूत के इस 24वें श्लोक में कालिदास ने बेतवा के जल में प्रिया के अधरों के स्पर्श का सुख देखा था। तो इसी बेतवा को मार्कंडेय ने कुछ ऐसे कहा कि
2: जब सृष्टि विलीन होगी तो बेतवा बाल मुकुंद के उदर में समा जाएगी।
1: महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रकरण के 25वें अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को बेतवा के तुंगारण क्षेत्र का महत्व समझाया, जहां सारस्वत, अंगिरा, भृगु ऋषियों ने तपस्या की तथा लोक कल्याण के लिए अनेकों यज्ञ किए।
2: वामन पुराण में कार्तिकेय जब देव सेनापति का पद ग्रहण करते हैं तो बेतवा उन्हें श्वेतानंद प्रदान करती है।
1: वारह पुराण में बेतवा का अलग ही रंग है। इंद्र वरुण पुत्री प्रसंग में बेतवा मोहक मादक रूप में सामने आती है, तो पद्म पुराण में इसकी महिमा इन शब्दों में मंडित की गई।

0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झिरी बहेड़ा नामक स्थान से निकली बेतवा अपने उद्गम पर बूंद बूंद रिश्ते जल स्रोत की तरह दिखती है।
1: यहाँ आसपास के चरवाहे तक को ये पता नहीं कि यह किसी नदी का उद्गम है या यहाँ से कोई नदी भी निकली है।
2: हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नदी वदी नहीं है।
1: और विचित्र है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर भोजपुर है, जहाँ यही बेतवा बहती हुई कलकल करती हुई दिखती है, जिसे वही चरवाहा अच्छी तरह जानता है।
2: हाँ जी, भोजपुर तो अच्छे से जानते हैं, वहाँ बेतवा भी है।
0: भोजपुर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहाँ 2.3 मीटर ऊंचा तथा 5.49 मीटर घेरे वाला विशालतम शिवलिंग है।
1: यही वो पहला पुण्य स्थल है जिसे बेतवा ने अपने उद्गम से 16 किलोमीटर दूर जाकर सौंपा है।
0: विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पारियात पर्वत क्षेत्र जहां से बेतवा निकली है, वो स्थान समुद्र तट से 525 मीटर ऊंचाई पर है। पारियात पर्वत से निकलने के कारण बेतवा को पारियात पुत्री भी कहा गया है।
1: अलग अलग कारणों से इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसके किनारे बहुत सारे बेंत होते थे, इसलिए बेंतों वाली कहा गया। पहले इसकी धारा का बहाव बहुत तेज था, वेगवान था, इसलिए वेगवती कहा गया। वही बिगड़ते बिगड़ते वेत्रवती और अब बेतवा हो गया।
0: पुराण कथाओं में वृत्तासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है। पुराणकारों के अनुसार उसी ने महागंभीरा कुआ खोदा जिसमें से बेतवा प्रवाहित हुई।
1: कितना विचित्र है कि जिस नदी को दैत्य ने प्रवाहित किया वो लगातार लोक मंगल करती रही है, अपने तट पर संतों कलाकारों को जन्माया है, जैसे ओरछा के तुंगारण्य क्षेत्र में तुंग ऋषि।

0: बेतवा के किनारे हमीरपुर जिले में जिटकरी नामक स्थान है, जहां याज्ञवल्क ऋषि ने दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र की अनेकों अवधारणाएं रची।
1: बेतवा के ही तट पर चंडौत के च्यवन ऋषि ने अक्षुण यौवन तथा निरोग स्वास्थ्य का अमर रसायन च्यवन प्राश तैयार किया। इसी बेतवा के जल से उन्होंने कायाकल्प योग सिद्ध किया।
0: बेतवा के जल के औषधि गुण के बारे में जानकारी देते हुए ओरछा संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकृष्ण मिश्र,
2: यह बेतवती जम्बू वृक्षों के की जड़ों से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें इसके किनारे अधिकांश जामुन के पेड़ पाए जाते हैं।

0: करते हैं। और यह जामुन के पेड़ से स्पर्श करके चलने वाला ये जो जल है, इस बेत्रवती में हवन की सामग्री में काम आने वाली औषधि जिसे गोंदरा कहते हैं, उस वह भी अधिकांश रूप में पाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं जम्बू मूल का रस और गोंदरा की जड़, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर त्वचा को साफ करने वाली और मानसिकता पर प्रभाव करने वाली औषधि का काम करती है।
1: बेत्रा के ही तट पर पाराशर में पाराशर ऋषि ने दीर्घकालीन साधना से मनुष्य के मोक्ष के साधन जुटाए। तो यहीं से थोड़ी दूर इंदल घाट में इतिहास प्रसिद्ध चंदेल परमाल युद्ध देखा।
2: आला चल रहा नाग दमन का जो पचली थे हो जा पार, टांगे चल रही है नागड़ की मचा भयंकर हाहाकार। ऐसी रण खेतों में हो रही चारों ओर मार ही मार, ऐसी रण खेतों में हो रही चारों ओर मार ही मार। जैसे अहरन पर घन पटके दैसे दैसे करे लोहार, जैसे तोता आम को काटे और तम्बोली काटे पान, दर्जी काटे जू कपड़े को अपना काटे खेती किसान। बड़े लड़ैया गर्म देखे जिनकी बात कहीं ना जा, लड़ैया गर्म हो गए।

0: बेतवा तट का एक और गौरव।
1: बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल, जिनकी मुगल सेनापति सैयद गाजी से हुई युद्ध गाथा कोटरा की किंवदंती बन गई है।
0: इसी बेतवा के किनारे ओरछा में केशव ने हिंदी कविता को वो ऊंचाई दी जिसे सूर तुलसी के समकक्ष समझा गया।

0: वेगवती पेत्रवंती पेत्वा। झिरी बहेड़ा से झिरकर जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है।
1: अनेकों नदी नाले बेतवा को अपनी जल राशि सौंप कर उसे समृद्ध करते हैं
0: और जल से समृद्ध हुई बेतवा आसपास के क्षेत्रों की पैदावार बढ़ाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती है।
1: विस्तृत जानकारी देते हुए गंज बासोदा के जल संसाधन कार्यपालन यंत्री श्री राम सिंह दरबारी।
2: विदिशा में जो हलाली है जिसको आजकल सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, ये बृहद परियोजना है और इससे बीसा जिले में 21,566 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर दो मध्यम परियोजना भी हैं, एक कैथन परियोजना है जिससे 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी नरेंद्र परियोजना है, ये भी मध्यम योजना है, इससे इस समय 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और इसका रूपांकन क्षेत्र जो है वो 2827 हेक्टर करीब। यहाँ पर जो है 27 लघु सिंचाई योजना है और 4 उद्वहन सिंचाई योजना है और इन सब योजनाओं से 43,740 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और जिले का निरा जो बोया हुआ क्षेत्रफल जो है 5,17,928 हेक्टर है और इस जिले का अभी सिंचाई प्रतिशत जो है 8.83% है। सिंचाई योजनाओं के बनने के बाद में यहाँ की जिले की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।
1: बेतवा पर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी कर रहे हैं।
0: पारीछा बांध 1885 में बना था। उत्तर प्रदेश के झांसी हमीरपुर तथा जालौन और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा भिंड जिले इससे लाभान्वित होते हैं।
1: ढुकवा बांध 1909 में बना।
0: माता टीला बांध 1952 में बना।
1: इन बांधों के बारे में बताते हुए अधीक्षण अभियंता श्री बीएम पवार।
3: सन 1885 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारीछा जलाशय का निर्माण कर बेतवा नहर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पारीछा जलाशय की क्षमता में योगदान देने के लिए सन 1909 में ढुकवा बांध निर्मित किया गया। यह योजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिलों में सिंचाई की सीमित आवश्यकता पूरी करती थी। पहली बार सुनियोजित सिंचाई के लिए सन 1958 में उत्तर प्रदेश शासन ने माता टीला बांध बनाकर एक बहुउद्देशी परियोजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर प्रणाली के विस्तार और गुरसराय नहर प्रणाली के निर्माण तथा मध्य प्रदेश में भांडे नहर प्रणाली से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ।

0: अभियान तीर्थ है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बन रही ये परियोजना बेतवा का वरदान है।
1: राजघाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए चंदेरी के अधीक्षण अभियंता श्री जीपी बिथारिया।
2: ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध का निर्माण हो रहा है, दोनों राज्यों के सहयोग से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में जो नहरों का निर्माण है वो दोनों राज्य अपने अपने स्रोतों से कर रहे हैं। इसमें जो नहरें निकलती हैं तो बांध के बाएं तट से एक नहर निकलती है, LBC नहर। इसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना बाएं तट नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरीगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर का होगा। और ये अपने जो दतिया करियर कैनाल है, इससे डायरेक्ट इरीगेशन तो कोई नहीं है, टीकमगढ़ में थोड़ा इरीगेशन है, 3,383 हेक्टर। बाकी इसका पानी जो है वो अंगूरी बैराज में डाला जाएगा। अंगूरी बैराज से पावर जनरेशन भी होगा करीब 6.5 मेगावाट, और फिर ये पानी दतिया इरीगेशन कैनाल में डाला जाएगा। तो ये दतिया इरीगेशन कैनाल है, इसकी लंबाई है करीब 31 किलोमीटर, और इससे जो इरीगेशन होगा वो 57,683 हेक्टर इरीगेशन होगा। ये होगा भिंड और दतिया जिले में। इसके साथ ही जो अपनी भांडेर नहर कैनाल है, इसका भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और ये करने के बाद 36,083 हेक्टर और इरीगेशन होगा भिंड और दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,16,000 हेक्टर इरीगेशन होगा, और इस योजना को वर्ष 1996 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
1: आधुनिक विकास यात्रा में बेतवा सांस्कृतिक जीवन की धरोहरों से सराबोर है।
0: बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ही नहीं, सांस्कृतिक रेखा भी है।

0: और वह चमन के झूले झूमता रहा। यह स्थल विंध्य पर्वत शिखर पर लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दूर से अशोक के समान दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने यहाँ चैत्यों, तोरणों, संगारामों, विहारों आदि का निर्माण किया। सांची की शिल्पकला भगवान बुद्ध के जीवन काल की चार विशेष घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं हैं भगवान बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन गुप्तकालीन शिल्पकलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण वास्तविकता पूर्ण ढंग से किया। सांची के मुख्य चैत्य द्वार पर ही एक विशाल एवं अप्रतिम स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्य चैत्य में सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया तथा चैत्य नंबर 2 और 3 में भिक्षु सारिपुत्र एवं महामोग्गलायन के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा गया।
1: देशभक्ति तथा स्वाभिमान का गुण बेतवा की पानी का स्थायी अंग बन चुका है।
2: जून 1924 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा के तट के घने जंगलों में शरण ली थी।
1: ओरछा से सटे गांव सातार के श्री गोविंद सिंह तोमर बताते हैं,
3: भगवान दास माहौर झांसी के हैं, वो भी नेताजी हैं। इनसे उनकी मुलाकात थी, वो झांसी आए तो झांसी जब आए तो झांसी ने भी उनका मकान घेर लिया। जब पुलिस ने मकान घेर लिया तो जनानी भेज करके भागते भागते अब उन्हें का जंगल है, तो रेलवे लाइन की लेके और फिर ओरछा चले गए सीधे।
1: 12 अप्रैल 1930 जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी दिन झांसी से भी सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई थी और बेतवा के कछार में लोना मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था।
2: धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से बेतवा की यात्रा अद्भुत समन्वय बिखेरती है।
1: बेतवा के ही किनारे देवगढ़ है, जो हिंदू जैन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है।
2: ओरछा मध्य भारत की अयोध्या है। बेतवा तट पर बसी ये पुण्य नगरी स्वयं में संस्कार तथा साहित्य संस्कृति का अपूर्व उदाहरण है।
1: यहाँ के राम राजा मंदिर के सेवक श्री लक्ष्मण सिंह गौर बताते हैं,
4: 1631 बिक्रमी में तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना की है। इसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान यहाँ वो अयोध्या से ओरछा आए हैं। मत्कोसा महाराज की रानी कुंवर गणी अवधपुरी से ओरछा ले आई अवध नदी।
1: बेतवा तट पर शांडिल्य ऋषि की साधना स्थली जलालपुर है। इसी के पास रिरुआ नामक स्थान है, जो जैन प्रमुख ऋषभ देव की साधना स्थली रहा है।
2: सैदनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने ही मंदिर मस्जिद आसपास बने हैं। यहाँ शंख ध्वनि के साथ पूजा आरती भी होती है, अजान भी होती है। इसे सिद्धनगर भी कहते हैं। रक्तदंता मारण मोहन की सिद्ध स्थली है सैदनगर,
1: जहाँ दुर्भाग्य से कुछ नदियाँ अपनी भौगोलिक संरचना के कारण कई समस्याएं पैदा करती हैं। वहीं बेतवा अपने उद्गम से यमुना में समागम तक 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा में केवल प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, उत्साह और देश प्रेम बांटती है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई समस्याओं के निदान भी खोजे गए हैं,
2: जैसे मुगावली। 1977 में जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों डाकू ने आत्मसमर्पण किया, तो उन्हें सुधारने के लिए मुंगावली की खुली जेल में रखा गया था।
1: मुंगावली जेल के सहायक जेलर श्री आर आर रॉय का कहना है,
5: देखिए मुंगावली में जो खुली जेल खोली गई, इसके पीछे सन 1973 में जो चंबल के आत्मसमर्पित डाकुओं ने जयप्रकाश के सामने आत्मसमर्पण किया, तो उनको समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करने हेतु और उनकी विशेष मांग पे उस खुली जेल की स्थापना 1973 में की गई। दूसरी जेलों में यदि उनका चाल चलन अच्छा रहा है, उनकी केस हिस्ट्री कोई वो पेशेवर हत्यारा न हो इस तरह का रहा हो, तो आजकल इसी आधार पर खुली जेल में कैदी भेजे जाते हैं।
1: बेतवा का संपूर्ण क्षेत्र सस्य श्यामला की वनस्पति अनुप्रति है। अनगिनत पेड़ पौधे, वन जंगल इसके तटों पर फैले पड़े हैं,
2: जैसे सागौन, शीशम, थौ, साज, तेंदु

0: महुआ, नीम, बबूल,
1: आम, जामुन, आंवला, उमर, अचार, बेर, मकोरा, बेल, नींबू और करौंदा।
0: बेतवा के उपजाऊ क्षेत्र में अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कटहल, सीताफल, अंगूर इत्यादि भी पैदा किए जाते हैं।
1: इसकी जमीन में कच्चे होने पर खट्टे लगने वाले तथा पकने पर मीठे लगने वाले फल खासकर अच्छी पैदावार देते हैं।
0: आयुर्वेद के लिए बेतवा घाटी वरदान है। आयुर्वेद में उपयोग के लिए पौधों की लंबी लंबी श्रृंखला है।
1: अर्जुन, अशोक,
0: कचनार, अमलतास,
1: खैर, बकायन,
0: बहेला, बिलवादी जैसे बड़े वृक्षों के अलावा शंखाहुली, नागरमोथा, कष्टकारी,
1: केवंश बीज, भारंगी, गोखरू,
0: उदयफूल, नाय, इंदौस,
1: बक्की, नरगुंडी, इंद्रजौ,
0: आक, धतूरा, जवासा
1: और हरजरू, इमलौसा, फूलकर जैसे छोटे पौधे भी हैं।
0: विकास के क्रम में हमारे बीच से ये सुख धीरे धीरे घट रहा है। कभी बेतवा के पास घने जंगल थे, पर अब सब क्षीण होता जा रहा है।
1: पर हाँ, उम्मीद बाकी है, क्योंकि आज भी जब सिरीप, दुधी, काक, कदम की फूलने के दिन आते हैं तो बेतवा रंग और गंध से भर उठती है।
0: रंग गंध की झलक हमें ये विश्वास दिलाती है कि आज बेतवा अपने अतीत के सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक, वानस्पतिक वैभव तथा आधुनिक विकास के संक्रमण पर जहाँ खड़ी है, वहां से आगे भी वो बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन इसके लिए हमें मंडीदीप और विदिशा में हो रहे औद्योगिक विकास से उत्पन्न संभावित खतरों को पहले जांच लेना होगा।
1: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के वरिष्ठ शोध अधिकारी डॉक्टर एस एम मिश्रा।
2: औद्योगिक प्रदूषण यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिक पाया गया है, जिसमें एक मंडीदीप और दूसरा विदिशा है। यदि कहा जाए कि प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से, जहाँ से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहाँ से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए, तो शायद यह संभव है कि हम अपने इन प्रयासों के कारण इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं।
1: एक आदर्श उद्योग भी बेतवा के किनारे अपनी पृथक पहचान बनाए हुए है।
0: ये है चंदेरी का हथकरघा उद्योग।

0: बेतवाने हमें सूर्यकांत मणि, सुलेमानी पत्थर, गोमेदक, दूधिया पत्थर तथा बिल्लोर जैसे नगीने भी दिए हैं। हमें भी सोचना है हमारे पास क्या है बेतवा को देने के लिए।
1: भ्रम न हो न संशय, क्योंकि भ्रम अंततः ऐसी चूक में बदल जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं होता।
0: जैसे बेतवा धसान संगम पर दशरथ को हुआ था, जल भरते श्रवण को मृत के भ्रम में बाण से मार डाला था।
1: इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी होगी
0: और अक्षुण्ण रखनी होगी। झिरी बहेड़ा से पत्योरा तक बेतवा की स्थायी संस्कृति,
1: झिरी बहेड़ा से भोजपुर,
0: रायसेन,
1: सांची,
0: विदिशा,
1: गंज बासौदा,
0: राजघाट,
1: बसई,
0: माता टीला,
1: ओरछा,
0: हमीरपुर होते हुए
1: अपने संपूर्ण क्षेत्र को सींचती, संपन्न बनाती, सुसंस्कृत करती बेतवा अपने अभीष्ट को पत्योरा में प्राप्त कर

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्य माता दिति की बहन दनु का पौत्र था शंखचूड, वो भी अति पराक्रमी और बलशाली था। परंतु उसकी विशेषता ये थी कि उसने देवताओं को उनके आसनों से हटा दिया था। उसकी बाकी की प्रजा उससे बहुत प्रसन्न तथा सुखी थी। शंखचूड़ की धर्मपरायणता के कारण ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे। परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर के लिए सुर, असुर और मानव समान थे। देवताओं की आपदा देखते हुए भगवान शिव शंकर ने शंखचूड़ से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी, देवाधिदेव को युद्ध स्थल में आया देख धर्मज्ञ शंखचूड़ तुरंत अपने रथ से उतरा, महादेव को साष्टांग प्रणाम किया।
2: वाह महाभाग सूत जी, शंखचूड़ का ये कृत्य तो अवश्य ही प्रशंसनीय है। युद्ध स्थल में भी उसने धर्माचरण नहीं त्यागा, विरोधी होने के उपरांत भी उसने शिव जी की आराधना की।
1: शौनक जी, धर्मज्ञ व्यक्ति सर्वेश्वर के महत्व से भली भांति परिचित है। उनके हाथों मिली मृत्यु स्वर्ग प्राप्ति से कम नहीं होती, प्राणी को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
2: फिर क्या हुआ सूत जी?
1: दोनों ओर के असंख्य वीर योद्धा अपने अपने पक्ष की जय जयकार करते हुए युद्ध के क्षेत्र में उतर पड़े।
3: विष्णु हरे, देवाधिदेव तथा शंखचूड़ के मध्य युद्ध चलते वर्षों व्यतीत हो गए हैं। प्रतिदिन प्रातः युद्ध आरंभ होकर सूर्यदेव की अंतिम किरण पर समाप्त हो जाता है, परंतु किसी भी पक्ष की विजय के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
4: हाँ विधात, दोनों पक्षों के वीर बड़ी संख्या में आहत होकर गिर पड़ते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने मंत्रों से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं।
3: अरे देखिए तो श्री विष्णु, महादेव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल उठा लिया है।
4: हाँ? अब तो शंखचूड़ का अंत निश्चित है।
5: ठहरिए, प्रभु शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए। इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप क्षण भर में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम हैं। आपके समक्ष तो मात्र एक असुर है, परंतु आप सर्वेश्वर द्वारा देव मर्यादा का हनन उचित न होगा।
3: क्या देव मर्यादा का हनन?
5: शंखचूड़ को स्वयं परम पिता का वचन है, जब तक उसके शरीर पर श्री विष्णु का दिया परम उग्र कवच रहेगा और उस कवच की रक्षा उसमें समाया तुलसी का शील करता रहेगा, मृत्यु और जरा शंखचूड़ पर अपना प्रभाव

0: नहीं डाल पाए। ब्रह्मा के इस वचन को सार्थक कीजिए।
1: तथास्तु। आज के लिए युद्ध समाप्त किया जाए। ब्रह्मदेव, विष्णु जी, ये वरदान और कवच आप ही ने शंखचूड को प्रदान किए हैं। अब आप ही मिलकर इस समस्या का समाधान कीजिए।
2: जैसे आज्ञा प्रभो।
1: आओ वृषभराज नंदी, चलें।
3: विधात, प्रतीत होता है महादेव हमसे अप्रसन्न हो गए हैं। तभी वे स्वयं कोई उपाय सुझाए बिना ही अंतर्धान हो गए हैं।
4: हमारे प्रति उनका यह व्यवहार उचित ही है कमल नयन। हम पहले अपने वरदानों से दैत्यों का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और फिर उनसे त्रस्त हो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं।
3: परंतु ब्रह्मन, हम दोनों भी तो महाप्रभु की भांति भक्त की भक्ति के अधीन रहते हैं।
4: और भक्त भी शंखचूड़ जैसा, जिसने हमारी भक्ति के साथ साथ अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। इससे पूर्व के महादैत्य मारे इसलिए गए कि उन्होंने अपनी प्रजा को अत्यधिक त्रस्त किया।
3: ब्रह्मदेव, हम मात्र देवताओं के ही पक्षधर बनकर कैसे रह सकते हैं? विधात, हम सृष्टि संचालक हैं। असुर, मानव, सभी प्राणी हमारी प्रजा हैं। जब हमारी प्रजा सुखी है तो हम उसके राजा को दंड दें तो किस आधार पर?
4: परंतु देवता महेश्वर की प्रजा का एक अंग हैं। वे अपनी प्रजा के एक अंश पर दूसरे अंश द्वारा अत्याचार का दंड दे सकते हैं।
3: परंतु आकाशवाणी ने महाप्रभु से देव मर्यादा का उल्लंघन ना करने की विनती की है।
4: अर्थात हमारे और आपके वरदानों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कहा है।
5: नारायण नारायण नारायण, आप दोनों प्रभु फिर किन गूढ़ विचारों में लीन हो गए?
3: मुने नारद, आप अंतर्यामी होकर ऐसा क्यों कहते हैं?
5: नारायण नारायण, भगवान विष्णु, आप तो मायाविदों में भी श्रेष्ठ मायावी हैं। आपके लिए क्या असंभव है?
3: शंख चूर से उसका सुरक्षा कवच वापस ले लेना असंभव नहीं है नारद मुने, परंतु तुलसी जैसी पवित्र नारी का शीलहरण अवश्य असंभव है।
5: नारायण नारायण, पर प्रभु, जलंधर पत्नी वृंदा के समय पर तो
3: हम प्रभु हैं, तो क्या हमारे हृदय नहीं है नारद? उस दुर्घटना को हम आजीवन नहीं भूल पाएंगे।
5: परंतु देव, आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे। वो तो देवी वृंदा की उस समय की मानसिकता थी।
3: परंतु उस मानसिकता को जगाने का कारण तो हम ही थे। एक सती को हमारे कारण देह त्याग करना पड़ा।
5: नारायण नारायण, प्रभु, आपके कारण नहीं।
3: फिर
5: ये तो उसकी नियति थी। परम पिता सृष्टि करता है, आप सृष्टि संचालक हैं, परंतु नियति सदा संघारक निर्धारित करता है। ये तो शिव लीला ही होती है। इससे ना तो हम अछूते रह सकते हैं और ना ही आप और ना ही सृष्टि का कोई भी अन्य प्राणी। वे हर गतिविधि को मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हैं ये तो शिव ही जाने। ये तो शिव की ही महिमा है।
4: पुत्र नारद, तुम क्या इंगित करने का प्रयास कर रहे हो?
5: परम पिता, मैं तो आपका ध्यान महादेव की आज्ञा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। जाते समय वे आपको आदेश देकर गए हैं, आप दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान कीजिए।
4: तुम्हारा कथन सर्वथा उपयुक्त है नारायण देव।
3: कहिए विधात।
4: शिवाज्ञा का पालन तो करना ही होगा।
3: हाँ ब्रह्मदेव, ये तो हमारा परम धर्म है।

0: शीत लहर से तो मुझ ब्राह्मण का शरीर, क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा?
1: अरे ये कौन जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति है जो स्वामी शंखचूड़ के मंडप की ओर बढ़ा आ रहा है?
2: ठहरो, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
0: मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भटक कर इस ओर चला आया हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। यदि कुछ भोजन और इस शीत से बचने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो जाए तो।
1: अरे मूर्ख, इस रण क्षेत्र में तू किन वस्तुओं की अपेक्षा कर रहा है? जा, भाग जा यहाँ से। स्वामी शंखचूड़ के विश्राम में बाधा ना डाल।
0: शंखचूड़? असुरराज शंखचूड़? मैं भी तो उन्हीं की प्रजा हूँ। उन्होंने कभी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया है। स्वामी,
1: अरे
0: स्वामी,
1: क्या कर रहे हो?
0: दानवेंद्र शंखचूड़,
1: अरे
0: मेरी रक्षा कीजिए।
1: चुप हो जाओ।
0: अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए स्वामी।
1: चुप हो जाओ।
2: भागता है या नहीं?
3: ठहरो प्रहरी।
2: एक असहाय दीन व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करना शंखचूड़ के प्रहरी तक के लिए उचित नहीं।
0: स्वामी,
2: बोलिए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: मैं धन्य हुआ स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ असुरराज शंखचूड़। थोड़ा भोजन तथा तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र मिल जाए बस।
2: भोजन का प्रबंध तो हो ही जाएगा
3: प्रहरी।
4: आदेश दैत्यराज।
2: हमने अभी भोजन नहीं किया है, उसे तुरंत हमारे इस अतिथि को दे दिया जाए।
4: जो आज्ञा।
2: परंतु विप्रवर, इस शीत से आपकी रक्षा करने के लिए
0: आप अपना ये कवच दे दें स्वामी। हाँ, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है, प्रातः मैं आपको लौटा दूंगा।
2: ये कवच? परंतु ब्रह्मा जी तथा तुलसी ने कहा था कि मैं ये कवच कभी ना उतारूं। इसमें उसके शील का वास है। मैं जब तक ये कवच धारण करे रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा।
0: हे दानवीर शंखचूड़, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है।
2: ये ब्राह्मण बेचारा शीत से मरा जा रहा है। ठीक ही तो है, एक रात्रि की ही तो बात है। रात्रि में युद्ध तो होता नहीं, और प्रातः ही मुझे ये कवच लौटा देगा।
3: लीजिए द्विजश्रेष्ठ, ये रहा मेरा कवच। आप भोजन करें तथा रात्रि में इस कवच को ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा करें।
0: हाँ स्वामी।
3: तथा मुझे आशीर्वाद दें कि इस युद्ध में मेरी विजय हो।
0: हाँ स्वामी, मेरा आशीर्वाद है। असुरराज, इस युद्ध में सत्य की ही विजय होगी।
3: और इस बार सत्य मुझ दानवीर के साथ है।
5: मुने नारद
6: जी। भगवान,
5: शंखचूड़ से अपना अभेद्य कवच लौटा ले पाने में तो हम सफल रहे हैं। इस प्रकार तुलसी के शील का अपहरण भी हमने कर लिया है।
6: नारायण नारायण, अब तो महाप्रभु के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई है। भोर हो रही है, आइए हम महादेव को सूचित करें।
5: परंतु एक समस्या है नारद।
6: वो क्या विष्णु देवा?
5: अपना कवच लौटा हुआ ना जानकर क्या शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा?
6: नारायण नारायण। हाँ भगवान, ये तो वास्तव में विचारणीय है।
5: तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा?
6: भगवन, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है।
5: कहिए मुने नारद।
6: आप अपनी माया से ऐसा ही एक अन्य कवच उत्पन्न करें। उस कवच को मैं किसी भी प्रकार शंखचूर तक पहुंचवा दूंगा और फिर इसके पश्चात देवादि देव को सूचित कर दूंगा। आप ये मूल कवच लेकर तुलसी के पास जाएं।
5: क्या कवच लेकर देवी तुलसी के पास जाऊं? परंतु क्यों मुनिवर?
6: नारायण नारायण, इससे दो कार्य सिद्ध होंगे प्रभुवर।
5: कहो नारद।
6: पहला तो ये कि ये कवच तेजोमय है, युद्ध क्षेत्र के समीप इसका प्रभाव बना रह सकता है, अतः इसका युद्ध स्थल से दूरस्थ रहना ही देवताओं के लिए लाभकारी होगा।
5: और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध होगा नारद?
6: नारायण नारायण, पति की मृत्यु पर सांत्वना देने को पहुंचे स्वयं भगवान विष्णु को समक्ष देख देवी तुलसी का दुख कम हो जाएगा और इस कवच में बसा देवी तुलसी का शील भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारायण नारायण।

0: असुरराज शंखचूड़, हम सर्वेश्वर हैं, हम छल से किसी को पराजित नहीं करते। अतः तुम्हें एक तथ्य से अवगत करना चाहते हैं।
1: देवाधिदेव, आपने मुझे संबोधित किया, मैं तो मात्र इसी से धन्य हो गया हूँ। आदेश करें।
0: शंखचूड़, नियतिवश भगवान विष्णु द्वारा दिया गया तुम्हारा सुरक्षा कवच देवताओं ने बदल दिया है। इस समय तुम मूल कवच से वंचित हो, अतः मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
1: देवताओं का एक और छल?
0: छल नहीं, तुम्हारी नियति ने असुरराज, ऐसा तो होना ही था।
1: परमेश्वर, यदि यही मेरी नियति है तो मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ।
0: मांगो, वर मांगो।
1: दया निधान, आपको तो ज्ञात है देवी राधा के श्राप से ग्रसित होकर ही मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था।
0: हम जानते हैं असुरराज, तुम पूर्व काल में कृष्ण भक्त सुदामा थे।
1: देवाधिदेव, आप मुझे मृत्यु प्रदान करके इस राक्षस योनि से मुक्त करें तथा मेरे स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में गोलोक भेज दें।
0: तथास्तु। हम तुम्हें ये भी वर देते हैं शंखचूड़, कि हमारे शूल से खंडित हुई तुम्हारी हड्डियों से शंख जाति का जन्म होगा। शंख का जल हमारे अतिरिक्त सभी देवी देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाएगा।
1: मेरे धन्य भाग्य, धन्य भाग्य।
0: और जैसे हमारे पुत्र गणेश अग्रपूज्य हैं, वैसे ही शंख ध्वनि हर पावन कार्य का आरंभ करेगी। वो इतनी तीव्र होगी कि दूरस्थ प्राणियों को भी पूजा आरती आरंभ की सूचना देगी। शंखनाद पूजा आराधना के आरंभ का द्योतक होगा। इस ध्वनि से प्राणी पूजा स्थल की ओर अनायास खींचे चले आएंगे।
1: मेरा जन्म सफल हुआ, अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दें।
0: तथास्तु। मुक्ति दें।

0: पुत्री तुलसी, इस छल में भी तुम्हारे कल्याण का स्वार्थ निहित था।
1: परम पिता, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने का प्रयास ना करे। मेरा शील भंग किया जाना मेरा ये कल्याण कैसे हुआ?
0: पुत्री, तुम्हारे द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग सर्वथा अनुचित है।
2: देवी तुलसी, आपका किसी ने शील भंग नहीं किया है, अपितु आपने अपने शील को कवच में स्थित कर एक असुर को सौंपा था। हमने तो आपके उसी शील को लौटाया है।
3: और तुलसी, तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम एक विष्णु भक्त को राक्षस योनि से मुक्त कराने का निमित्त बनी हो।
1: महादेव, आप
3: तुलसी, तुमने सुदामा को श्राप मुक्त करवाया है। वो पुनः अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हो गया है। तुम्हारी तपस्या भी सफल हो गई।
1: वो कैसे देवाधिदेव?
3: तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि मृत्यु के पश्चात शंखचूड़ पुनः गोलोक जाएगा तथा बैकुंठ में तुम श्रीहरि का सामीप्य प्राप्त करोगी।
1: तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव?
3: पुत्री, अब तुम ये नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लो तथा लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओ।
0: पुत्री तुलसी, तुमने जो ये देह त्यागी है ये गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई है।
2: और तुलसी, परम पिता के आशीर्वाद से देव पूजन सामग्री में तुम्हारा प्रधान स्थान हो गया है। तुम्हारे पहले शरीर को वृक्ष का रूप मिल गया है।
3: हमारे आशीर्वाद से तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाएगा।
0: और पुत्री तुलसी, इस वृक्ष के पत्तों में औषधि के गुण भी होंगे। इनका सेवन अनेक प्रकार के शारीरिक विकारों को मिटाने वाला होगा। ये पत्ते जीवन के लिए आवश्यक वायु को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे।
2: देवी, तुम हर परिवार के घर आंगन में पूजी जाओगी तथा वो घर आंगन तुम्हारे आशीर्वाद से समृद्धि एवं संपन्नता से परिपूर्ण होगा।
1: मैं धन्य हुई प्रभु शिव शंकर, मैं धन्य हुई।
4: परम ज्ञानी शौनक जी, तुलसी को पावन कर देवाधिदेव कैलाश पर्वत को लौट गए।
5: शिवलीला भी कितनी अनोखी है महाभाग सूत जी। अपने विरोधी शंख चूर तक को उन्होंने मृत्यु के पश्चात पवित्र शंख में परिवर्तित कर दिया और तुलसी को भी पावन दैवी देह प्रदान कर दी।
4: शौनक जी, यही तो है शिव महिमा।
5: सूत जी, शिव महिमा के अन्य रोचक प्रसंग भी तो सुनाइए।
4: हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु कुछ देर के बाद।
6: श्रोताओं, वास्तव में शिव महिमा का इतना अधिक महात्म्य है कि कोई भी प्राणी उससे अछूता नहीं बचा है। आम धारणा यह है कि महाकवि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे तथा मीराबाई श्री कृष्ण के विचारों में मगन रहती थीं, उन्हीं के भजन लिखती तथा गाती थीं। परंतु भगवान शिव शंकर की भक्ति वर्ग जाति तथा वर्ण विशेष की धरोहर नहीं है। तुलसीदास तथा मीरा ने भी शिव आराधना की है। प्रस्तुत है मीराबाई की एक शिव स्तुति।

शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 36वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक से लिया था।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

ही भगवती महाशक्ती की जी पुण्यात्मा होना निवासोमा लक्ष्मी रूपे, पापी जनों ने त्या दरिद्रता रूपे, तो शुद्ध चित्त वाड़ाओं ने त्या हृदय में बुद्धि रूपे, सत्पुरुषों में सिद्धि रूपे, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूपे निवास करे छे। ए देवी समग्र विश्वनो कल्याण करो।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।